0: कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कारयत नाहं कारयत ये स ते काम कामाय स्वाहा
1: निर्गारुषीं नमो नमः।

0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: देभ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूवाय भूमाय स्वाहा
0: सुरक्षितये स्वाहा
1: सुदक्षित